0: की जय।
1: सत्य सनातन धर्म
0: की जय।
1: शुभ रात्रि।
0: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराज की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

श्रीदीप नरम भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, श्री अलक पुरुष महादेव की जय, श्री स्वामी माधवानंद सकुरुदेव की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं, ये जो पृथ्वी है माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाते हैं, जैसे कि अभी गुरुजी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम है, यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मी वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है, कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य स्विदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
तो उनके हृदय

0: में कितना होता। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूं, लोगों के प्रति दया करूं। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। का ना भगवान कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Que dollar?
1: De passe.
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti विश्व शांति नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन, दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी, ब्रह्म ऋषि पी थावला, नागौर कैश्मीर है,
3: नागौर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
4: तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है, जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या? 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना गलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो माधवानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी महाराज। विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी झोली

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: விஸ்வேஷம் பாது வந்துண்டின் தண்டபாணி ஜவைரவம் வந்தே காசிங்குவா கங்கா பவானி மணிகரணிகாம் வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோடி சமப்பிரப நிரவிகனம் குர மேதேவ சர்வகாரி சர்வதா சித்தி புத்தி சகித ஸ்ரீமன் மகா கணாதிபதியே நமஹ சர்வோபச்சாரார்த்தே பிரார்த்தனா பிரபு நமஸ்காரான் சமர்ப்பயாமி அத சங்கல்பா हाथ में अक्षत पुष्प कुछ दक्षिणा लेकर के जल लेकर के संकल्प प्रारंभ करेंगे
1: थैली कहाँ है थैली ऐसा वाली लो हाँ करो संकल्प करो
2: चालू कीजिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु हेलो
0: जी समझी
1: हाँ शुरू करिए
0: ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु हो श्रीमद भगवतो महाप्रदस्य विष्णु रात्ने या प्रवर्तमान अद्य श्री ब्रह्मणो निजति प्रार्थे श्री श्वेतवारागल्पे वैवस मन्वंतरेष्टा विंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे
1: जम्बूद्वीपे
0: ठीक समझी वो देश कौन
1: सा चेक रिपब्लिक देश है स्ट्रिल्की ग्राम है
0: रिपब्लिक देश स्टील की ग्रामस्थ समुपार अंतर्गते आश्रम प्रांगणे प्रभुवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभवनामि संवत्सरे रविदक्षिणायणे महामांगल्य वर्षारितौ महामांगल्य प्रथमासोत्तमे मासे शुभे आषाढमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यान्तौ अद्य वासरावासरस्तु अद्य शुक्रवासरान् भृगुवासरान् वितायां सुमनक्षत्रे अनुराधानक्षत्रे शुक्लयोगे करकरणे परतः वणिजकरणे वृश्चिकस्ते श्रीचन्द्रे करकस्ते श्रीसूर्ये श्रीदेवराजगुरो शेषेतुग्रहे सुविदायुधं राजस्थानानि स्थितेतु तत्सु एवं ग्रहगुणगणविषय विशेषमिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अच्युतगोत्रोत्पन्नस्य परमपूज्य महामण्डलेश्वर स्वामिवर्यः सर्वेषां सन्न्यासिगणानां सर्वेषां भक्तजनानाम् अद्य समुपार्श्वे मम आत्मनः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा प्रसादेन प्राप्त्यर्थं उत्तरोत्तर गुरुभक्ति सद्विचाराणां प्राप्ति अर्थं श्री सद्गुरुदेव प्रीत्यर्थं अद्य दिने गुरु पूर्णिमा महोत्सवे अंतर्गते पूर्वाह्ने गुरुपूजने तथा च सर्वेषां देवतानां ध्यानम् अहं करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये ओं जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तद् सुप्तसि दैवैति दुरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरे कन्दन्मे मनः शुभसंकल्पस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु हनुमत पूजना भगवान सियावर रामचंद्र जी का ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है ओम मनोज वमरदुल्य वेगम जितेन्द्रियम मध्यमदा अमृष्टम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वास्मरन् नरो निलिप्यते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ओं पूर्वस्वः श्रीरामचन्द्रस्य परिवार देवताभ्यो नमः प्रार्थना प्रभु नमस्कारान् समर्पयामि लेफ्ट हैंड में अक्षत पुष्प लेकर के गुरु जी के चरणों पे जो चरणों पादुका है उस पे सीधे राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है
1: लेफ्ट हैंड
0: मैं बोलूंगा समझी रुको यार
1: शुरू करो शुरू
0: ओम हाँ लेफ्ट हैंड में अक्षत पुष्प लेकर के गुरु जी के चरणों पे चरण पादुका पे चढ़ाना है ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमदः सुरजुब्बेनापः तबुज्ञा उपमात्कविष्टाः सकश्चजोनिमततश्चिवः ओम अखण्डमण्डलाकानं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री

वासे। ओम शलकपुरज महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महा

0: महामंडलेश्वर श्री पूज्य स्वामी तात्पुरी जी महाराज की जय।
1: महामंडलेश्वर स्वामी विवेकपुर जी महाराज की जय।
2: पुष्पांजलि करें।
3: पुष्पांजलि करें।

0: ओम राजाधिराजाय वसये सताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम बौद्ध्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयम समुद्र प्रिया ईशा सर्वभौम सर्वशांता दुरार्दादृतिभ्य समुद्र पर्यंताय एकराडितप्येत श्लोकोपगी दोमर्दः परिवेष्टा रोमरुद्धस्य आसंग्रही आविक्तस्य गाम
1: प्रेषस्तोत्र
0: आविक्तस्य गाम प्रे विश्वे देवासुवासदेहि ओम मा विश्वद चक्षुरुद विश्वदोम गो विश्वदो बाहुरुद विश्वदस्पादो तं बाहुव्यान्तमति संपदरिर्द्यावा भूमिर्नयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तद्भृगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री चरण पादुका पादुकेभ्यो नमः चरणारविंदयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि पुलि गजानंद सरकार की जय द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज

हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंदपुर जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हम स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतार गुरु जी महाराज की जय। सत्य सनातन।

0: विक्रम भैया
1: आप शुरू कीजिए जल्दी भैया।
0: गुणगण विशेषलिट्टायां शुभपुण्यतिथौ अच्युत गोत्रोत्पन्नस्य परम पूज्य महामंडले महामंडलेश्वर स्वामी वर्यः सर्वेषां सन्यासी गणानां भक्तजनानां अद्य अभी वहां पर टाइम टाइम का
1: टाइम हुआ है वहां भी शाम का टाइम 8:13
0: अद्य प्रदोष वेलायां सायंकाल रात्रि काल वेलायां अद्य दिने यथाशक्ति षोडशोपचार गुरु चरणारविंदयोः गुरु चरण पादुकेभ्यो नमः पूजनाख्यन सर्वेषां भक्तजनानां अहं प्रीयतां तत्तत् साम्बशिवार्पणमस्तु। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ओम शक्राय नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। स्वामी जी चरणों में दंडवत प्रणाम।
2: हरिओम हरिओम ब्रह्मणे नमः। So when you all come for pranam, you touch the flowers, don't offer it, you all touch it, and then we will put all the flowers together on top, so then it's touched by all of you, the flowers, okay? The flowers are here. Namo Narayana. Namo Narayana. Namo Narayana.
3: Pardon. Až budete přicházet k oltáři, tak se všichni dotkněte těch květin, co tam jsou položené. Nedotýkejte se přímo těch střevíců, ale dotkněte se květin. Neberte ty květiny a až všichni dokončíme tu řadu, tak my ty květiny položíme na střevíce. A tím vlastně ten pozdrav bude vykonán od nás všech.
2: Oh, okay, nothing. Found it. Nothing. Found it, found it. I couldn't find this, I found it. It's okay.
4: नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते वासुनाद्वासुदेवस्य वासुतं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। All of you sit down. Where's yours? Huh? Do we have for everyone? Do we have shorts for all the sannyasis?
5: Yes, we have.
4: No. Ariyom sasina indro vrdashvaha sasina pugha vishvedaha sasina starakshav varishtanemihi sasino brihaspatiradadatu prakadashva marutha prashnimatara shvam javano vidatehu jagmayagni jivva manava sura chakso shveno deva avasagamanniha padram karne bhishanya madeva padram pashemakshavirajatraha स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्नोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदौ अग्निदेवा जत्रान् शक्राजरसं तनू नाम्मा पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरकतायुर्गन्तोः अदितिर्दोरतिर्नन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनामदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु सर्वार्ष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वारिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यः चरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। वो करेंगे नहीं बिना तलक का।
3: Sridiv Bhagavan ki jai. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyana Mulam Guru Murati, Puja Mulam Guru Padam, Mantra Mulam Guru Vakyam, Mulam Guru Kripa. Om Deep Jyoti Parabrahma, Deepam Sarve Mohanam, Deepanam Sujate Sarvam Sandhya, Deepam Sarva Satya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paraki Jai.
5: Sridip Narayan Bhagavan Ki Jai.

0: श्रीदीपनर्यम्बगवान्
1: की
0: श्रीदेवपुरी समहदेव
1: की
0: सतगुरु स्वामी माधवनंजी भगवान
1: की
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी महेश्वरनंजी गुरुदेव
1: की
0: महामंडलेश्वर श्री स्वामी तरपुरी जी महाराज
1: की
0: महामंडलेश्वर स्वामी विवेकपुरी जी महाराज
1: की
0: जय हो। श्रीदीप नरयम भगवान की जय। श्रीदेवपुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधव।

0: की जय।
1: देवा की जय।
2: श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। महामंडलेश्वर श्री पूज्य स्वामी तारपुरी जी महाराज की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय। Sri Dipnarayam Bhagavane Ki Jai. Sri Alakpuri Jisidatit Parampara Ki Jai.

श्री दीप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्री शंकर भोलेनाथ की जय।

0: नारायण भगवान की जय। देवापुरीशा महादेवा की जय। स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु जी महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। अवतारपुरी जी महाराज
1: की जय।

0: Come a little back. थोड़ा मेरे पप्पी से आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। और मास्क निकाल दो। स्टार्ट करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वर नंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: विदाउट गुरु वी कैन नॉट नो ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअली गुरु इज नॉट ओनली ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु इज ऑल्सो पार ब्रह्म परमेश्वर। ओम।

वन डे माता पार्वती सैद टू शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सैद, माई गॉड इज माई गुरु।

0: अनंत शिव भूषित परिभज काचार ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: अच्छा
2: बोल दे मामा, एक आध बोल दे फिर से
3: बताओ। थे
1: बोल ले
3: नहीं, हां ले
2: ये।

0: नींद का जड़ा जाए
1: नींद वाला व्यम कर दो
0: मुझे चेरोड़ी काटी है महाराज काट दिया
1: है अरे ओ माय
0: गॉड वो
2: चलो आवाज बोलो साहब।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सत गुरुदेव की जय,
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय, श्री अलकपुरीश महादेवा की जय।

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए।

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tam so ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatana Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.